रचायो नंगे आमन जामने आ, फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो किती है। को नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे हाव खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया। अत मिलो मित्र चिराने गुरथिया साखी ता डिठम आखी फिर जे अवर ना दिसे। को नानक शंत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे ऐसी मन प्रीत कीजे। आसा महला पंजवा श्लोक बन मन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा तार क्या है तुझे दयार मन त रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुणपणी कोड इंदर अनेक देव जप्त स्वामी जय जयकार। अराध नाथ दयाल नानक साल संगत मिल उधार कोड देवी जा को सेव लक्ष्मी अनक पात गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिनस रात। नखेत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतर बेत हर शास्त्र जा को जपात पद पावन भगत वचल नानक मिली गए संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी अनजानत जो सेव तेती न जाए गनी अवगत अगंत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा। सर्व जाजक एक दाता न दूर संगी जारा बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवा श्लोक उदम करो वडभागी हो सिमरो हर हर राए नानक जे सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द प्रम जाए। शंत नाम जपत गोविंद न अलसाइए पेट साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द ना पौ व्याप नाम सिमरत ससुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्राव मान मुखी।

नै अलसाइये पावन पत पुनीत नाम नरंजना परम अंधेर विनाश ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभु नरंजन जल थल मही अल पूरिया एक निमख जाके हृदय वसया मिटे तसे वसूरिया अगाध बोध सुमरत स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जंपै पावन पत पुनीत नाम नरंजना ओढ़ गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय असर तो चरण तुम्हारी शरण सिद्ध हर चरण कारण करण स्वामी पतत उदन हर हरे सागर संसार पावे उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संसंग विदे नाग पयम पै चरण जंपे ओढ़ गई गोपाल दयाल कृपा निधे भगत वचिल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तह तह प्रगटाया प्रभु आप लिए सुमाए सह सुपाए भक्त कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वशल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाके ग्रेव हर ना हो सो सदकी रावे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाने गुरबचन जाने फिर संतन सोहाक मरे ना जावे जाको राम पतार ताके अंध कणा सुगवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तिद ग्रह नहीं ऊना सब कछु मदरबानी तेरे मानी फिर सुहागता का बना नानक वखाने गुर भजन जाने जाको राम पतार ताके अंध कणा आओ सकी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है तया मिटे संताप आप ने जान आई है शरण गही जे मान लीजे करे सो सुख पाइये कर दास दासी तर उदासी कर जोड़ दिन रहन जागी है नानक वखाने गुरबचन जाने आओ सकी संत पास सेवा लागी है जाके मस्तक भाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लग गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्याग गया मन शांत सहज सुभाव उठा अंध मंगल गुण गाया नानक वखाने गुर भजन जाने जाके मस्तक पाक से सेवा लाया आसा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल चंत मिलो संतन के संग

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे, मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मेरे नहा सेज सुहंतिया, प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

अंधी रित ज्ञान विगूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार। उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मोह द्वार। जति सदावे जूत न जाने छड बह करबार। सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे। पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे। महला पहला वदी सोवजग नानका सच्चा वेखे सोए। सबनी छाला मारिया करता करे सोए। अगे जात ना जोर है

दास है। सोई निरंजन देव महल्ला पहला, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मान रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया होवे गुनहगार, ता ओमी साधना मारिए। जेहा काले कालना, ते वेहो ना उपचारिए।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपास संतोख सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह कती है बामन वटे आए ओए बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए पुराना सुटिए ती फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्त अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी

करना कियो कल आपे ही ते तारी है। देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है। आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा। एक ने ही आस की दूजे लगे जाए। नानक आस कंडी है सदगी रहे समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आस क्यो न आखिए जे लेखे वरते सोए। महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए। नानक दोवे कूड़िया थाए न काई पाए पौड़ी। जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा समा।

गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया, कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभो,

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट

ब्रह्मपाती बिसनडारी पूर शंकर देओ तीन देव परतख तोर है करे किसकी सेओ पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ जे ए मूर्त साची है।

फिर पछताना बिरध पायो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ, चूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे, ताबरे धर्म की आस करे,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या तिन सरपनी खाई। सरपनी ते आ

आए। राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यों पूल नहीं कही है रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वान

चर भय सचिरा मन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस।

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेय बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरे हो।

अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे, नाही राम एयाना। पूजो

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़ी।

लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अनदिन हरपरा पुरख ते आया मेरे मन तन बिरो गुरसिख पगलाया मेरे प्राण सका गुर के सिख भाई मोको करो उपदेश अगर मिले मिलाया अरहाओ क्या हरपरा पावे ता गुरमुख मिले जिन वचन गुरु सदगुर मन पाया वड़भागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत्संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सदगुर संगत संग न पाया से पाहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रतारे हर आपे गुरमुख मिले मलाया जन नान

सागल सिट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभ की

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिल वरनारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवां आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती।

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूँ।

अटल पदवी नाम सिमरन, दृढ़ नानक हर हर सरन। गुजरी मोहल्ला पंजवा, अहं बुद्ध बहु सघन माया, महा दीर्घ रोग। हर नाम औखद गुर नाम।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण कार्य।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राग परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख अनंत

कायागढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी परम पूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख सके पेखवानी गुरसबदी खोलाइयन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाहो वाहो करते हैं रैन सुख विहाए वाहो वाहो करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

तिस नू आखीए जे गुण दाता मत धीर, वाह वाह तिस नू आखीए जे समय रहा समाए, वाह वाह तिस नू आखीए जे दिंदा रिजक समाहे, नानक वाह वाह इको कर सहलाईए जे सतगुर दिया दिखाए। महला तीजा वाह वाह गुरमुख सदा करे मानवख मरे बिख खाए, ओ ना वाह वाह ना पावई दुखे दुख विखाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करे लिवलाए, नानक वाह वाह करे से जन निर्मले, तिर पावन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनीजे, हर के पाणे हर मन वसै सहजे रस पीजे, हर के पाणे सुख पाईए हर लाह नित लीजे, हर के तख्त बहालीए निज कर सदा वसीजे, हर का पाणा तिनी मन्या जिन्ना गुरु मिलीजे। श्लोक महला तीजा वाह वाह सेजन सदा करे जिनको आपे दे बुझाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे होमे विचों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करे से जन सोने हर तिनके संग मिलाए, वाह वाह हिरदे उचरा मुखो पी वाह वाह करे, ओ नानक वाह वाह जो करे आओ तन मन तिनको दे। ओ महला तीजा वाह वाह साहिब सच है अमृत जा का नाओ, जिन सेव्या तिन फल पाया हो तिन बर हारे जाओ, वाह वाह गुणी निधान है जिसनु दे सोखाए, वाह वाह जल सल भरपूर है गुरमुख पाया जाए, वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे, नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ न आवे पौड़ी, हर जीव सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी, सगुर ते सच पछाणीए सच सह सुमाणी, अनदन जागे ना सवे जागत रहन निखाणी, गुरमती हरस चाखिया से पुन पराणी, बिन गुर किने ना पायो पाच मुए अजाणी। श्लोक महला तीजा वाह वाह बाणी निरंकार है ते जेवड़

वाव अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वाव कर्मी पाईए आप दया कर दे नानक वाव गुरमुख पाईए अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए विण कर्मे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तेन जम की तलब ना होवई ना ए दुख सहा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे

छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प तार पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साध जना के संग भवजल बिखम तार सेवो सदगुर देव अगे ना मरो डर खिनमय करे निहाल ऊने सुबर पर मन को होए संतोख तिहाइये सदा हर तो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तोर सलोक महला पंजवा लगड़ी सो थान जोड़ नहारे जोड़िया नानक लहरी लख सयान डुबन दे ना मा पिरी महला पंजवा बन पी हावले एक साथी लदम दुख हरता हरनामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूर्ण कामा पौड़ी पाईन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुद नो जपत्या पहुंच न सके कोय तेरी टेक जान गुरपूरे वाहो वाहो सुखला चितार मन गुर पे सिवत भंडार करमी पाईए सतगुर नदर निहाल बौड़ना ताईए रखे आप दया।

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच

सुखदाते दुख पंजन स्वामी, जन नानक सदबल जाई है, देव गंधारी माई होनहार सो होई है। राच रहो रचना प्रवे अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रखाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हु मैल परे अभमानी, कब साधु संग तोई है, ओए ना मेटे प्रभु का किया, दूसर नहीं अलोई है। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है, देव गंधारी माई सुनत सोज पै डरत, मेर तेर तदो अभमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो, नाहिन का बोल करत, निमख ना बिसरो ही है मोरे ते, बिसरत जाई हो मरत। सुखदाई पूर्ण प्रकर्ता, मेरी बहुत ज्ञान पजरत, निर्गुण क्रूप कुलहीन नानक, हो अनंद रूप स्वामी परत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहूं, गावत सुनत जपत उधारे, वर्ण अबरना सब हूं हरहाओ। जैते उपजो तई समायो, ए बद जानी तब हूं, जहां जहां ए देही तारी, रह न पायो कब हूं। सुख आयो पय परम बिनासे, कृपाल होए प्रभ जब हूं। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साध संग तज लभ हूं। देव गंधारी मन जू अपने प्रभ भावो, नीचो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलाओ अरहाओ। अनक अडंबर माया के बिरते, तासु प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने, ता में शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक, जीव मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद प्रमंडारियो, तुमरी कृपा ते सब को अपना, मन में एव बिचारे ओ रहाओ। कोट प्राद मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुखे उतारयो, नाम जत मासु पायो, चिंता रोग बिदारयो, काम क्रोध लोभ चूड़ निंदा, साधु संग बसारयो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारयो। देव गंधारी मान सगल सियान परही, करन करामन गार स्वामी, नानक ओट गही रगाओ, आप मेड पै सरनाई, ए मत साधु कही। प्रभु की आज्ञा मानसु पाया, परम अंधेरा लही, जान प्रवीण स्वामी प्रा मेरे, शरण तुम्हारी अही। खिन में थापु थापन गारे, कुदरत कीम ना पही। देव गंधारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुर प्रसाद काहू जाते रगाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, इनको काल ना खाते, रंग तुम्हारे लाल पय हैं, राम नाम रसमाते, मां किल बिख कोट दुख रोग, प्रभ

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा अम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

मंगै हर भगत पाइये प्रभते आइये जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल भगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिनी जानी जिस आपरा कृपा करे अमरथिया फिर ना मुआ कल कलेसा दुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन ना जाई राम जिस ते उपजड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मैयल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपावन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रव प्राण आधारे राम तान तन खीन फया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर

गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातरक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवरो पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले

दुख हरन कृपा करन मोहन कलकले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेरहू ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख लिहो करके चेरे तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोए मगन कढ़ लिहो मुरारी राम लोभ मोए विकार बद्ध्यो अनक दोख कमावने अलिप्त बंधन रहे।

बिख माया तन संच मर अंत होए सवशार कर्म धर्म सु संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पवे दर गए होए खुवार पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही वेचे रतन तरे आप लहाए करे जिस किरपा

आपे सुगड़ स्वरूप से आनी, अपना चोज कर वेखे आपे, आपे सबना जीया काहे जानी। श्लोक महला तीजा। एहा संध्या प्रवान है, जित हर प्रम मेरा चित आवे, हरसो प्रीत उपजे, माया मोह जलावे। गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनवा अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके, मर जम्मे हुए खुवार। महला तीजा। प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास न जाए, नानक सब गुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आ ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बगसे करे दया, आपे पुल न पुल्ले कभी, सब सच तपापस सच थया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरे साध संग, तैतन उड्डे खेहे, जिन कीती तिसे ना जानई, नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा। खड़ बस्ते चरणार बिंद, रसना जपे गोपाल, नानक सोपरा सिमरी है।

जिसनु गुरमुख आप बुझाए सो सदगी दरगे पाए मान जेदी पैज रखे घर स्वामी सो सत्या घर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए सबदे सो चेतन लावई जित सुख वसे मन आए तामस लगा सदा फिरे अहे निस जलत बिहाए जुत भावे सो थीए कहना किशु न जाए। महला तीजा सदगुरु फुरमाया कारी एक करे हो गुरु द्वारे होए के साहेब संभाले हो साहेब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक ऐथे सुखे अंदर रखसी अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बृहस्पति।

जग मोह मर पे ना जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। मोहल्ला तीजा क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहेब मनोना विसरे ता सैला मरना होए। मरने ते जगत डरे जीव्या लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवित मरे हुक्मे बूझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सा जीवन होए पौड़ी, जा आप किरपाल होवे घर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे। आपे सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप घर पावे। अपने सेवकां की आप पैज रखे, अपने भगतां की पैरी पावे। तर मराए हाय हर का किया, हर जन सेवक नेड़ न आवे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, होर केती चख चख आवे जावे। श्लोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा अतुल न तुल आ जाए, कीमत कने न पाई किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया एन बिद वसया मन आए, नानक आप अमयो है गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे आपे मिलया आए। महला तीजा ए मन यो तन नाम है, जित सदा सदा सुख होए। टोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

एत उद देखो ओड़ तुम्हारी मोए निर्गुण गुण किसू न जाता। नानक साधु देख मन राता वढ़ांस महला पंजवा।

सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीज वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंत मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा विसरनाई प्रभु दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ जय चित आवे तो थान सुहावा जित वेला।

अम्माली बिन पिर काम न आए। जा से बात न पुछिया अम्माली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अम्माली जिन सो रहा समाए। होवारे तिन सुहागणी अम्माली तिनके धुआ सद पाए। जिचर दूजा परम सा अम्माली तिचर मैं जानिया प्रदूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अम्माली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अम्माली तेर सर्ब रहा पर पूरे। जन नानक हर अंग माणिया अम्माली गुर सदगुर कै लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन

हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम पय हर की सरनाई पाथर डुबदा काट लिया साची वड़ियाई बिग से अमृत पय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पय अंतरवासना वसाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए मनमुख पूले दिख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखु हर हर सबको करे विरले हिरदे वसाया नानक जिनके हिरदे वसया मोख मुक्त तिन पाया वढ़ांस महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है जब साज अंदर होए सच ताम साचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बही है भला कही है

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप छाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचरते विचारी ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बार वस्त ना पाल जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है

मेर कित मुख तुसा लागी। गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया बक्सली आखिन माघी। नौंद पाई वजी वधाई वाजे अनखल तूरे। कहो नानक मैं वर कर पाया मेरे लाथे जी सगलब सूरे। सलोक क्या सुनें दो कूड़ वंजन पवन चुला रहा। नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनें दे सच तनी। शंत तिन कोल कुमाई जिन प्रसरवनी सुनिया राम। से सह सुहेले जिन हर गरसना पणिया राम। से सह सुहेले गुणे अमूल्य जगत उधारने आए। भय बोझ सागर।

तेत पै दे पग खिसै तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगण यारे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

से उबरे सचे सिउं लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बलोइए है जे ही हर नाम लिहो हर तत् न खोइए नित जप्यो हर हर दिन सरात हर दरगह टोइए सो पाए पूरा सदगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लिखोइए।

मन मानिया गुरके शब्द अपार ए सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत न आईया शब्द ना करे विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे पाए प्यार मनमुख से ती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति तुड़दी विल मना हो गई।

पौड़ी तिस गुर कौ हो मारिया जिन हर की हर कथा सुनाई तिस गुर कौ सद बलिहारण जिन हर सेवा बणत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

मनमुख कायरक रूप है, बिन नावे नक नाहे, अनदन तंदे व्यापिया, सुभने पी सुख नाहे। नानक गुरमुख होवे तां उबरे, नाहे तां बद्धे दुख सहाहे। महला तीजा, गुरमुख सदा दर्श होने, गुर का शब्द कमाहे, अंतर सांत सदा सुख, दर सच्चे सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच समाहे पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा, सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो पाओ, ओसनु सुख न उबजे, भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले, सच्चे सिउं लिवलाओ। महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल न हो गई, होमे शब्द जलाए, कूड़े की पाल विचों निकले, सच वसे मन आए। अंतर सांत मन सुख होए, ससंजम कार कुमाए। नानक पूरे कर्म सतगुर मिले, हर जीव कृपा करे रजाए। पौड़ी, जिसके कर दीवान हर हो।

ब्राह्मण घारा यू मनुआसदा सुख वस्से सहजी करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करामन घारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तू सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहे।

की खबर न पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से न पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पागे सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वड़ाना जल थल।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

न जाने हिर फिर कीच बुड़ा ही जीव अंतर मैल लोभो झूठे बार नहावो काही जीओ निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीओ पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सज गुरबचनी फल पाही जीओ जो पावे त्यों राखो हर जीओ जन नानक शब्द सलाही जीओ सोरठ महला पहला पंच पदे

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लूप हाने, हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिन्नी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवतापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई तुण मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो।

पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण मूर्ख जाता रे हर आरात

तूं दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बन।

सुखदाता गुरपूरे दिया उपदेसा तुम्हें संग पराता रखाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विध जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय न मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम

प्रीतमय अपने हर मंदिर सुखदाई हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इश पुजाई सोरठ महला पंजवा गुर के चरण बसे पीतर शुभ लखन प्रगटीने हे कृपाल पूर्ण परमेश्वर नाम निधान मन चीने मेरो गुर रखवारो मीत दून चौनी दे वड़ियाई हो बानीता नीत रहाव जी जन प्रसगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड़ियाई नानक सद भले हारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल सती अगम अपार बिलश मनोद आना सुगमानु खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सभोयत जड़ लंगो बिग संसार रघा है कृपाल पूर्ण अविनाशी आपे की निसार पेग पेग नानक बिसानो नानक नहीं सुमार सोरठ महला पंजवा गुरपूरे अपने कलतारी साब का उपजी दया आपे वेल वडाई कीनी कुशल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जस सदा निहाल रखाओ अंतर बार थन थनंतर जल कद पेखो सोई नान गुर पायो वड़ पागी ते जेवड़ अवर न कोई सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तोन प्रभु के चरण निहारिया रखन हारे रखो बार सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरणाई जा की सेवना बिरती जाई रखाओ कर मैं सुख वार फुन सूखा प्रभ अपने पय दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभु वा कृपाला सोरठ महला पंजवा साधु संग पया मन उद्यम नाम रतन जस गाई मिड़गी चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हिरदे हर के चरण मसाई सुख पाया सह तुन उबजी रोगा कान मिटाई रखाओ क्या गुण तेरे आख वखाना कीमत कह न जाई नानक भगत पय अविनाशी अपना पया सखाई सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोस अविनाश प्रभ अपने कृपा थारी आड़ पैर आराधो स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो पाई मेरे कौ प्रभ आगे अरदास रखाओ जो मांगो सोई सोई पाव अपने खसम परोसा कौ नान गुरपूरा पेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा सोरठ महला पंजवा सेमर सेमर गुर सतगुर अपना अगला दुख मिटाया ताब रोग गए गुर बचनी।

जन की लाज रखाई, साध संगत सा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, फलत पलत पव दोवे सवारे, हमारा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव की आपे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी।

साहिब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पै दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा परहाओ तेरिया दासां रिदे मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल कन तकिया तेरा तू पार उठा कुर मेरा जिन जिन सा संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सवतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रखाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हा रसक रस गुण गाया प्रकाट्या जमका फासा मन पूर्ण होई आसा जय पेखा तै सोई हार प्रभन अवर न कोई कर कृपा प्रभ राखे साब जन्म जन्म दुख लाथे निर्भो नाम त्याया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाण पाई करतारे ताव छोड़ गया परवारे गुरपूरे है राखी तरन सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखिन में उपजे मन हुआ सदा सुखाला रहाओ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा थारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया गुर का सद पयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम स साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विध करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ मज्जन गुर अंधा रासे जप हर हर किल खनासे।

पार ब्रह्म निभागी पूरी, ताई बात न रहिया उरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर घर नाम सुमारे। अपने दास का सुधार खवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता जो पाला रखाओ, वड़भागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जब जी वैसे वड़भागा, हर अमृत बाणी गावे। साधा की तूरी नहावे, अपना नाम आपे दिया। प्रभ करण हार रख लिया, हार दर्शन प्राण आधारा। क्यों पूर्ण विवन विचारा, हर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पनवा। गुर पूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जय गीता सुहेले, हर कृपा पा मिले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले वल पावो। जी कै संग सहाई ही रखाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सा जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइये। बौड़ न जोनी पाइये, जे देवे पुरख विधाता। हर हस्ते नहीं जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे कीती पूरी, प्रभ रव रया पार पूरी। खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना। गुर के चरण कवल तारे, बिघन ना लागे तिल का कोई। कार्य सगल सुवारे, हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए। पादत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते। सबला थे पाप कमाते, गुण गोविंद ने तगाई है। सा संग मिल त्याई है, मान बांछित फल पाए। गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा। जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया। प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा। दैद सदन मेघ कटा काट, दामन चमक डरायो। सेज अकेली नींद नौ नैन, फिर परदेश सिधायो। हुण नहीं संदेश रो मायो, एक कोसरो सिद्ध करत लाल। तब चतर पात्रो आयो रखाओ, क्यों बिसरे यो लाल प्यारो। सर्व गुणा सुखदायो, मंदिर चर के पंथ निहारो। नैन नीर पर आयो, हो पीत पयो है बीचो। सुनत दिस निकटायो।

जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी, ना परयो भगत गोविंद का, ए राखो पैज तुम्हारी, हर जियो निमाणया तू मान, नतीजा चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत कौ कुर्बान। अरहाओ जैसा बालक पाए सो पाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बो पाती, बौड़ पिता गल लावे, पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सबद जाने, ता किस पै आग सुनाइए, कहने कदन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाइए, आवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रखाइए, होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बेनंती, पूरा सदगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख बसंती, सोरठ महला पंजवा, सेमर सिमर प्रपय आनंदा, दुखले सब नाठे, गुण गावत त्याद प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे, जग जीवन नाम तुम्हारा, गुर पूरे दियो उपदेशा, जप भौजल पार उतारा, रहा तू है मंत्री सुने प्रा तू है, सब कुछ करने गारा, तू आपे दाता आपे भुगता, क्या यो जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख बखानी, कीमत कहन न जाई, पेख पे जीवे प्रव्यपना, आचर तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रस्वामी, पात मद चीनी पूरी, सदा सा नांग बलहारी, बाछो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे,

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया तो सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जनसा पय दयाला प्रभ ने कर दीने सह सुपाय मिले गोपाला

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आप मिलाया कहो नानक सर्व

की ओटा जो सिमरै हकीकत होवै उधरै सगले कोटा रगाओ संत संग जस गाया इह पूर्ण गर्तन पाया को नानक आ मिटाया।

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरे, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सवनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मत पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सासंग कब हु नहीं कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई, सोरठ महल्ला नाम, माई मन मेरू बस नागे, जिस बासर बिखेन को तावत, के बदरो को तागे रखाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन, निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यु, बिरथा जन्म सिरावे, मदमाया के पयो बाबरो, तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन, ताको मर मना जाना, जब घी शरण साध की आयो, दुर्म सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मान, ताटी जम की वासी, सोरठ महल्ला नामा, रे नर ए साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुबना, बिन सद लगत न बार रखाओ, बारू पीत बनाई राजपत, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के, उर्जो खां गवार, अजहू समझ, कज बिगड़ो नाहिन, ताजले नाम मुरार, कहो नानक रिज मत साधन कहो, वाख्यो तोय पुकार, सोरठ महल्ला नामा, ए जग मीत ना देख्यो कोई, सागर जगत अपने सुख लागेओ, दुख में संग न होई रहाओ, दारा मीत पूसन बंदी, फगरे तन स्यों लागे, जल ही निरतन देख्यो नरको, संग शाड़ सा भागे, कहो का या मन भौरे कहो, इन से उन्हें लगायो, दीना नाथ सगल पै पंजन, जसता को बिसरायो, स्वान पूजो पयो न सुध, बहु जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की रखो, नाम तुहारो लीनो, सोरठ महल्ला नामा, मान रे गयो न गुर उपदेश, हां पयो जो मूड मुंडायो, भगवो कीनो पेश रखाओ, ता छाड़ के झूठे लागो, जन्म अकारथ खोयो, कर प्रपंच उधर निज पोखयो, पास की न्याई सोयो, राम भजन की गत नहीं जानी, माया घात बिकाना, उर्ज रहो बिखेन संग बौरा, नाम रतन बसराना, रहो चेतना चेत्य गोविंद, बिरध आओ सिरानी, हो नान घर बिरध पछानो, उल्ले सदा परानी, सोरठ महल्ला नामा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने वर पै नहीं जाके, संचन माटी मान है रखाओ, नैन दया ने उस्त जाके, लोभ मोह अभमाना, हर्ग सोते रहे न्यारो, नायमान अपमाना, आस्था मनसा सगल त्याग

दो तुकी तू गुणदातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हों पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो अखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मनहर सु बैरागिए पाई दार खर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजिए पाई ही मैला तन होए ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेह गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदक सके लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल सा जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो तुत्या गई विखाए, सगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए। नानक गुर सरनाई उबरे सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सबदरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनिया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गो प्याया अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिन का दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमण मरना मिट गया, काले का किस नाम बसाए। हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए। नानक हो बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक कुलखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो नेहो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे मेहो। जो हर दर्शन की उस्तत है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा सुमाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोमन को माटा। ताकि हो बलोमन हारी, क्यों मिटैगो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण अदा।

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई।

चारो राजा राम को रास दे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

कोए, ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुझ बाज प्यारे के वरहा सावड़े आई देह, जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए, जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहिब अपना अवर न जाचौ कोए, नानक ताका दास होए बिंद बिंद चुख चुख होए। साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख।

राग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए।

जो हर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी अरख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नी डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचन बैसन तरतायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर होमे मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरखे पारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नामरता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जिना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम संगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बोलागी क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड़ पुरख वडागी तुमरी गत मिल कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रस्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सदगुर सदपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिसके सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल सबके लख पाप ले जानी रखाओ ऐसा संत सद जिन पाया ते वड़ पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रस्वामी हम घर लोच लुचानी हर घर सफर बिरख प्रस्वामी जिन जप्यो से त्रिवतानी हर घर अमृत पी त्रिवता से तबलाथी पूख पुखानी जिनके वडे पाग बड़ ऊचे तिन घर जप्यो जपानी तिन घर संगत मेल प्रस्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल है गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर घर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च घर बंद हो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर घर बूंद पए हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रहे ना सको एक राती ज्यों मिल अमले अमली मर जाई है त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम घर सरवर अगह हम ले ना सके अंत माती तू पर परम पर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना घर जप्यो गुर रंग चलू ले राती हर घर भगत बने अज सोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरणाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर जो का धर्म कहो तुम पाई के छूटे हम छुटका की हर हर जा बेड़ी हर तुलखा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया का छूटी जमकी बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी
ਸਿਰ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾ ਕੀ ਤੁਮ ਵੜ ਪੁਰਖ ਵੜ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪੇ ਅਪਾਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਕੀ।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी और पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

पातत पामन गोसाई कोर सूह आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक तृप्त अघाई तनहा श्री महला पंजवां जिन कीने वसे अपने त्रै गुण

पाखंड हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम गी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

हाँ हाँ प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो, हराओ अगर कुटुंब सागर संसार,

जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय धारी ओड़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल रहाव, सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधान।

करे निर्बन जानत दूर तुमे प्रभनेर उद ताक उद ते उद पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुरदी हो अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्मा जन को नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पर जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम तान जि जन के पाले सोई पूरा साहा नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे

गए प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत सिन्हा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड़ साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम

जन राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा। राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उलक पीवत जन नानक,

राम रघव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वास संतन का संग पावो सो अगर मेहमाना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुत जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रभु लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोर बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम करम लिखिया।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मृत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव सरणाई तनासरी महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरस नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जावे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज सिला

तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसारा। औ नाम हर का सदा जाचो दियो प्रतरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच ती।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी पिर कर सोहे नार।

विद्धन द्रेणी पुरुष शब्द न माने फाही फाती सातन महल न पाए नानक आपे आप शाने गुरमुख सहज समाए तन सुहागण नार जिन पर जानिया जियो ना बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए।

नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेन थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो सत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना तार मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेता दर्शन पाओ इत कर पगत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाइये तहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा त्यो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया अरहाव जो तरणी को इंद्र बालगा कुसुम्बा जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालगा त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालगा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालगा त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बालगा चात्रक मुझ जैसे जलथरा मछली को जैसे नीर बालगा त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बालह त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचन

जंगम जाती तायो धूप दीप नहीं बेद तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ।

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका, अनाज मंगो सत सीका, गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीहन चंगी, जन तन्ना ले वै मंगी, जैत

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी पिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एका वारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमारा कहा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तौ वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा हम बार कशु ना जाने गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगजीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम, जैत सरी।

आपे सदगुर समुंद मताहा आपे मत मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मेल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी सरम सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी गुरमत जप ओ महाराम तब कर्म तर्म घर

ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहा जगमीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत रखाओ माल पिता बनता सुध बंधव इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सगाई मुक्त माल तनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बेगानी अवधे ता मैं संतोख न पाया हस्त रथ असव पमन तेज तनी भूमन चतुरांगा कंगना चलो इन मैं कशुए ऊर सिधायो नांगा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये नानकी हां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये जय तसरी महला पंजवां घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो विष्णु भई मैं बोबद सुनते कहो सुहागन सही यो रगाओ को कहतो सब बहार बहार को कहतो सा महियो वरना दिसे तेन लखिए सुहागन सात बुझियो सर्व निवासी कड़कड़वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसइयो जयत श्री

आसा मनसा पूरव जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसय दुख न कबहू चूरव बुझ प्रभ कहो जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा सा जन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कर कर तसे बसेरा अरहाओ दुख आराधन दुख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा तंत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सत संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी।

तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लिहो दयाल सागर संसारिया तलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओड उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पये मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जना सो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हर जस निरसुन त्रोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन दया पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो प्रव्या।

बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जा को कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा

आतो सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन अरहाओ जो मांगे सोई सोई पावे शिव हर के चरण रसायन जन्म मरण दुह ते छूटे भवजल जगत तरायन खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाह जे नानक सदा सिमर नारायण।

कर्म तर्म जपे ही आराम नाम निर्मल गैरी तरगाव प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन तव नीत पाठ काट को सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समर्थ का।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे अज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। सो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर

सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोड़ जन्म के दुख गवायो अरहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद।

तन महल न पावे, विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाई है, जो किश करे सो भला करमानी है, हिकमत हुक्म चुकाई है।

और कैसी चतराई, सौ नदर कर देखै सो दिन लेखै, कामण नौ निध पाई, अपने कंत प्यारी सा सोहागण, नानक सा सबराई, ऐसे रंग राती सहज की माती, अहे निस भय समाणी, सुंदर साय स्वरूप।

मैं ते वदवी एह से गुण मुझे न आवनी कह जी दोस्त रेह जिनी सगी सौरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए।

अहंकार चेतना है तो चेतल है, निर्दिन में प्राणी छिन छिन औध विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अराव, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवार्यो, जे बिद गुर उपदेसया

गुरबचनी फल पाया, सह के अमृत बोला, नानक कहे सहेली हो, सौखरा प्यारा, हम सह के दासियां।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगए पुछ न होवई, जे

करी जे को लए विकाए नानक काम न आवई जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाय जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग कर ही परचा पाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम सुमाए,

मन रंग माने सदा आनंद रहे दिन राती पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मानमुख मुग्ध नर को राहोय। जे सो लोचे रंग न होवे कोय नजर करे ता सतगुर पावे नानक हर रस हर रंग समावे। सूही महला चौथा जेवा हर रस रही अघाए गुरमुख पीवे सह सुमाए। हर राजन चा खोजे पाई तौ कत अंध साध लोभाई हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार। हर रस राते रंग मुरार मनमुख हर रस चाख्या ना जाए होमे करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे। सूही महला चौथा तार छेवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया कार्य से जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दूह फूक सब ले जाए। अरहाओ अरविदास चुमार उस्तद करे हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोभ शीपा कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। जन नाग तिन को अनदिन परसे जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आरा दया जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। जिन की वकीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर घर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। अरहाओ तोर भगत जिना को बख्शया हर अमृत पद पंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे तेस हलत पलत मोकारा। से भगत से सेवका जिन्ना घर नाम प्यारा इनकी सेवा ते घर पाई है सिर निंदक कह पवे शारा। जिस कर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आद जुगाद बखीली कने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा जिथे घर आरा दी है तिथे घर मित सहाई। गुर कृपा ते घर मन वस्ते होरत बिद लया न जाई। हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई। अरहाओ सह संगति संघ हर तन खटी है होर ते होर तो पाए। हर तन किते ना पाई हर तने का वापारिया। हर तन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वा के हर तन लया न जाई। हर तन रतन जवे हर माणक हर तने नाल अमृत वे लैवत। हर भगती हर लिवलाई हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया। भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तने की भगता को मिली वड्याई। हर तन निरपौ सदा सदा

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगद नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांकता।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीज, कुचर कठोर

क्रोध लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए तिस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने कड़ कड़ अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछु करे तोई फल माने।

एक करै अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा, मीत साजन सुध बंद बपाई, जद कद पेखो हर संग सहाई। जात मेरी पत मेरी तन हर नाम, सूग सहज आनंद विश्राम रहाओ। पार ब्रह्म जब पैर सनाहा, कोड आबद तिस बेद तनाह। हर चरण सरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिसना बिदार। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद विनोद मंगल सुगताहा।

तू मैं छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृढ़ तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

तुमहि प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला।

कामना तौल हर जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रह नानक दान पाए सूही महला पंजवां।

फरमाया, जैसे पवन चुहलाया, सोन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया, गरे अंध कूपाया, पावक सगराया, गई ओर साधाया, नानक हरत्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवां, कार सेवा एक ओंकार।

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव सह सीकर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर किरपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सदगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो रिणनावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे से तीरत्या जन्मना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगीए जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेवीए सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबदरते मन माहे जियो चिट्टे जन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख।

दो दीवी अंध कोर कब मोहाई है गर्म से कर चोर के सरू आई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जकाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बजाई है सदा रहे नेकाम जे गुरमत पाई है आराधे हर नाव मन वसाई है नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनोना नाम सार आए न सत्याई है ज्यों राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है मैं अंधले हर नाम लगती टोनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ जय देखो तय नाल गुर देखा लिया अंतर भार पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुल पावे तिवे रिजाए परम पौ पंजना जन्मत ही दुख लाग गए मरना आयक है जन्म मरण प्रवान हर गुण गायक है हौ नाही तू होवे तुद की साजया आपे थाप उथाप शब्द निवाजया देही पसु मरुलाए

अवकनेरा सुन प्रामेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाई है साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रत अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावेड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए मारड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ बिसु पई देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो

परम गद पाई, पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तननाठी, पाखंड परम गवाया, हम में पीर गई सुख पाया, आरोगत पय शरीरा, गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, वेण सतगुर मगना पाया, उजड़ पंथ प्रमे गावारी, खिन खिन तक्के खाया, आपे दया करे प्रवदाता, सदगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदे तन ओ माई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम प्रगस अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्र

हब वैसी गर्भ गुमानो, नेचल हब जाना मिथिया माना, संत प्रभु होए दासा, जीवत मरिगे पौजल तरिए, जे थीवे कर्म लिख यासा, गुर से वीजे अमृत पीजे, जिस लावे सहज त्यानो, नानक शरण पया घर द्वार, हाउ बल बल सद कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रत्याया, जिन प्रत्याया तिन सुख पाया, वडभागी दर्शन पाईए, थियो निमाना सद कुरबाना, सगला आप मिटाइए, ओ तन पाग सुद्धा, जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पै आप वेचाया, नानक दीन शरण सुख सागर, राख लाज अपनाया, सूखी महला पंजवा, हार चरण कमल की टेक, सदगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो, हर अमृत परे पंडार, सब किस है कार, तिस कै बलराम जियो, बाबल मेरा वर्ष मरता, करण कारण प्रभारा, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, औजल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तद कर कर जीवा, नानक नाम महारस।

सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी। समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आई है बाहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाई है हार गुण नित गाए नाम त्याए फिर सो

ऐ राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म हुआ पो भागा हर भेटिया एक।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना।

दय दिस पूर रहे आज स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा ने सुनिए राम अणगल चोज भगत पा पंजन अणगल वाजे तुनिए राम अणगल चुनकारे तत् विचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अरद है मैल सब कट है किल बग सगले खोवे ऐ जन्म न मरना आमन जाना बौड़ न पाइये जोनिए नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इश पुनिए सूही महला पंजवां संतां के कार्ज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाते सगल वसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नव निध सिद्रत दीने करते ओट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशित सुख पाया करते की दात सुवाई राम दात सुवाई निखुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगल सगले उठ नाठे दुख न नेड़े आया सांत सहज आनंद कनेरे बिरसी पूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचर जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मांस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध

सच रते से निर्मल हौमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

काजल फूल तंबूल रस ले तन किया सीगार सेजे कंतन आयो एवे पया विकार महला तीजा तन पिर ए न आखियन बैन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन पिर कहिए सोए पौड़ी भय बिन भगत न होवई नाम न लगे प्यार सदगुर मिले पौ उपजे पए पाए रंग सवार तन मारता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अत सोना पेटिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिद सो सच वरते संसार श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जेन रच रचना हम किए।

आवे, गुर के शब्द सलाई है, हर नाम समावे, सदगुर सेवा सफल है, सेवे फल पावे। श्लोक महला दूजा, केसरी कोई कोए, मन निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजे रोए। जा लग चेतन आव ही महला दूजा, जा सुगता सौरावियो, दुख पी समालियोए। नानक कैसे आणिए, क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हों क्या सारा ही किरम जंत, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप लय मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सुखाई। जो तेरी शरणागति तिन लय छुड़ाई। नानक वे प्रभाव है, तेस तिल ना तमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो, तथा सबना भगतां की। कबीर के एक ओंकार, सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना। राम को नाम न कबहू लीना, राम ना जप हो कमर मत लागे। मर जैबे कहो क्या करो अपागे रखाओ, दोसु करके कुटुंब जीवाया। मरती बार एक सर दुख पाया।

एक कोट पंच गिदार पंचे मांगे हाला, जिमी नाई मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोग मोको नीत डसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारे, तिलखो लिया उबारी रखाओ। नौ डाढ़ी दस मुंसब तावे, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापे नाही बहु बिस्टाला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। तरमराए का दफ्तर सोदया, बाकी रिजम ना काई। संता कहो मत कोई निंद हो, संत राम गए एको। कौ कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। सह की सार सुहा गण जाने, तज अवमान सुगर लिया मन। तान मन दे न अंतर राखे, अवरा देख न सुने अपाखे। सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। अरहाव दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जिनहा निरंतर भगत न कीनी। पुरसलाद का पंत दुखेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यो जन हो त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तय जीवन जग सच कर जाना। अरहाओ जिन जियो दिया सूरज अम्बरावे, सौकड़ पीतर घाड़ चलावे। कार बंदगी शा

तू दयाल दया पद दाता, क्या ए जंत विचारे मुक्त बंसल तुझते होए, ऐसा आग वखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त, जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले, तेन की गहन गद कही ना जाई, सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कही है, ना उरवार न पारे, जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग वेज मस्तक काले मार बिदारे, बिलावल मोहल्ला तीज अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए, तेते दूजा नाही कोए, तेदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ता को जाने दुबदा जाए रहाओ, आप सराप तसवट्टी लाए, आपे परखे आप

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीशे वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां चौक दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पाभो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेरी ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंग।

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई।

तान मन तान अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिरावल महला पंजवा, माद पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे रखाओ, तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरा वड़ भागी पाइये, मिल साधु हर नाम ते आइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे फज गुर के चरना रखाओ, आवर कर्म सब लोका चार, विर साधु संग होए उधार, सिमरत सास्त वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे।

आओ नित राम के ए अवखत जोग, आए बसो कर देशम है ए पले संजोग, नानक प्रसो प्रसन्न पए ले गए ब्योग। बिलावल मोहल्ला पंजवां, काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊठ सुधारे शदरपत संतन कै ख्याल रखाओ, अहंग बुद्ध को बिनसना ए तुरकी टाल, बोजूनी जन्म मरे बिख्या बिकराल, सत बचन साधु कह निध जपे गोपाल, सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सहज समाध आनंद सुख

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रखाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो

लोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे, पर ताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड़ जाहे। तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्राप पूरे गुरदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर। जित जित लाभो तित तित लगे स्यानप सब जाली, जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। तब के तुम ते मंगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। बिलावल मुहला पंजवा, साध संगत कहे बास बै कलम सब नसना। प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना, नाम कहे गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ। हर अचागत त्रापया मान रस लय हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना। शीतल सांत संतोख होए सा बूझी तृष्णा, दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारी राखिया पय प्रांपसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बिलावल मुहला पंजवा, पानी पखा तीस दास कह तब होवे निहाल। राज मिलक सिकदारिया

अंध कुब मैं गलत थे ताडे देह थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रखाओ पारा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीश कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो देव सूनी साधके बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वार समय सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंटली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म ताकी नदर निहाल गुर पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पया प्रत्यामन जोग रखाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केलव उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल मोहला पंजवा पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिन से परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निभत रहे गुर शब्द अखूट।

अपनाया, सेमर सेमर मन तन सुखी, नानक निरपया, बिलावल मुहला पंजवा, कर तर मस्तक थापया, नाम दी नूदान, सबल सेवा पार ब्रह्म की, ताकि नहीं हान, आपे ही प्रवराखता, भगतन की आन, जो जो चितवे साध जान, जो लेता मान रखाओ, शरण परे चरणारविंद, जन प्रभु के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले, ज्योति जोत समान।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखिठ गौरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवारे हो पाग तले जरावत हे ऐसे गढ़ में आए।

रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकार संते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई। बिलावल मोहल्ला पंजवां क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक।

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

आयो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवां राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत सगल समग्री पोखण परण थान तनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिख्या राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमण जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महानुत अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रहाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निर्थन तन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी।

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज सुमानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अनते टूटिए रिखते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंद त्रु बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा नहीं चूके।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी ही बलावल, नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटियो, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपुते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी, सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरियो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरियो, बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर साजा, हाथ सार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुधफन्नी, इस माया को दृढ़ कर रखो, बंधे आप चन्नी। क्या खेती क्या लेवा देई, परपंच चूड़ गुमाना, कहे कबीर ते अंत बगूते, आया काल निदाना बिलावल, शरीर सरोवर पीतरे, आछे कमल अनूप, परम जोत पर खोतमो, जा के रेखना रूप, रे मन हर पाय प्रम तजो, जग जीवन राम रखाओ, आवत कछु ना दिसई, न दिसे जात, जय पूजे बिनसे तही, जैसे पुरवन पात, मिथ्या कर माया तजी, सुख सहज विचार, कहे कबीर सेवा करो, मन मंज मुरार बिलावल, जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लागी, जीवत सुन समानिया, गुरसाखी जागी रखाओ, कासी ते तुन उबजे, तुन कासी जाई, कासी फूटी पणता, तुन कहां समाई, त्रिकुटी संद मैं पेखिया, काटहू कर जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी, कट माए ते आगी, आप आप ते जानिया, तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया, गोविंद मन माना, बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नौन दिता के, सहज सहज बोले देव रखाव, तावे माजो सब मैं पेखे, कुटल गांड जब खुले देव, बारं बार माया ते अटके, लय नरजा मन तोले देव, जय ओ जाए तही सुख पावे, माया तासना चूले देव, कहे कबीर मेरा मन मान।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पंच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिये छिड़ाए जिसके से

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवा जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

अहंकारी, जन पल माने निंदक वेकारी, गुर कै सिख सदगुरु ते आया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरतै घर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अवमानी की जड़ सर पर जाए, नी तरिया सतगुर तर तेरी, करके पारा खो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा के सिमरन।

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़ित अलख लखाया, जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

तुलखा लंघै जेत, अंतर पायत से तू रख। अहंस दीवा बले अथक, ऐसा दीवा नीर तराए, जे दीवे सब सोजी पाए रखाओ। अच्छी मिट्टी सोजी होए।

अगली किस खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सधाई, परमो के बांधे बंद, सुबन पया पहलाए अंध, यो तो रजन रचिया करतार, आवत जावत हुगम अपार, न को मुआ न मरने जोग, न बिनसे अबनासी होग, जो यो जानो तो यो नाहे, जान नगारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया, राम करी मोहल्ला पंजवां, जब गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है, फिर ना खाई महाकाल रखाओ, और जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग सा संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे।

वे परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त ना पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन का टेराए तो नर भौर न जो नी पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरया न

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, त्रिति व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो

अंत की बार ऊठ सिधारे, ना बिना सब चूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, ते सा माया मूठ परानी रहाओ। तीर्थ नाये न उतर समायल, कर्म धर्म सब हो में फैल, लोक बिचारे गत नहीं होए, ना बिहूने चल सहे रोए, बिन हर नाम ना टूटस पटल, सो दे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपे आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, रखन हारे रख हो आप, सगल सुखा प्रतुम रहे हाथ।

तो ही सुख जाना, मन असमझ साह संगतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दू गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, मां पुरख का संग पया रहाओ। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई पला, जय राखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है, तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है, सर्व आनंद जब दर्शन पाइए, राम गुणा नित नित घर गाएगे।

रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निम्ख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर जमद पूरा फैज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्तर।

तान। संतोह आया मन पूरा पाए, फिर मांगन काहे जाए। हर की कथा सुनत पवित, जेवा भगत पाई गत मत। तो प्रवान जिहृदय वसाई, नांग तेजन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गहो कर पकरी न आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओ चरणी आए पई, तुन संतो निर्मल विचार। आराम ना बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रखाव जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओ सेवक सेवा करे। मुख बिरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। तुन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी किन्नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु ना लहे। इसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्वमय पेख। पूर्ण पूरा आप एक, रतन अमोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु तू आप पछाण, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा, कोड प्रगास न दिसत अंधेरा। पशु प्रीत घास संग्रच, जिस नहीं बुझावे सो किद बुझ। जानन हार रहा प्रवजान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रवगाव है, नानक तिन जम नेड़ न आव है। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित, काटी बंद घर से वालाए। हर घर भगत राम गुण गाए, बाजे अनहद बाजा। रसक रसक गुण गावे हर जन, अपने गुरुदेव।

संग पवजल तरिगे प्रभ कई रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग तगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कहू न बिसर।

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माहे, करण हार कहो किस अज जनाहे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमारे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे बया पिया तोहे, उदम करे गाडर जो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सास समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्र पेखत नाही। सगले कासवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे। अंद करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कह, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबन सूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जग दीसे। ठगन हार अन ठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गद होय। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभु नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया। बिखे ठकौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तृष्णा बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिना सी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेहत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान। निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान। एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास। दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

जेवा सूची साचा बोल हर दर साचा नहीं रोल। एक बन में बैसे डुगर स्थान नाम सार पते अभमान ना बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावे दरगे मान हट अंकार करे नहीं पावे। पाठ पढ़े ले लोग सुनावे तीर्थ परम सो व्याध न जावे ना बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद कवे ना रखाई मनवा डोले नरके पाई जंपर बादो ले सजाई बिनावे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा हट निग्रह ना तृप्तावे पेवा। शब्द विचार गहे गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अपेवा। कर्म मिले पावे सच नाओ तुम शरणागत रहो सुपाओ तुम ते उपजो भगति पाओ। जाप जापो

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हमे रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवद देखे, सागत मान अपमान भया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देव कुटाम्ब माया ग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिनकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर लिट समय सार।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नी सीजे कार्ज सबरे मन प्रवत्याई जे ईगा ऊगा एक ओही जद का देखिए तत तत ओही ते सेवत मन आस करे जिस विसरे एक निमक न सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना के सेवा ना करु मारे गुर बोहे थवड़ पागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली मोहल्ला पंजवां ताऊ बिहावे रंग रस रूप ताऊ बिहावे माए बापूत ताऊ बिहावे राय मिलक वापारा संत बिहावे हर नाम आधारा रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ ताऊ बिहावे बेद अरबात ताऊ बिहावे

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमर गए जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी सिपावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ शंत, सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भयावड़ पागी हो ग्रे पलटे प्रव आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, राणा चुंजनड़ा गाओ सखी हरेक त्याव हो सतगुर तुम सेव सखी,

आदमी कलर कंध गिरंत गिण नावे क्यों छूटिए जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मत हीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मान तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिनको फास नारंच उड़े ता बेगुल बेगुले ताके चोकणी पंख तुटे पाही पड़ी आगुण पीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि आशड़ाए छूटिए वड़ा आप तनी गुरप्रसाद दी छूटिए कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय पावे ते दे थर थर कंपे जीड़ थान बिहू ना होए।

आधार सर्वे थान सनंतरी तू दाता दातार जय देखा ते एक तू अंत न पारावार थान सनंतर रभरया गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रामेल रहे खिर में टाए उसार।

भय चूरिये तनमय चीत गवार तन विरली सच संचय निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान देहे जे राचे रंग एक मन दीजे सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तात रह गए मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए टेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूंढती बस्त रही कारबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करतना छूटिए विण गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओ है अगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस कर्म ध्यान विण नावे निरपो कहा क्या जाना अब महान था करी के अपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले इस पे करी पुकार नानक प्रयो प्रयोजे करी मेले मेलनहार जिन विछोड़ी सो मेलसी गुर के हेत अपार पापुरा पापी को प्यारा पावल दे पापे पासारा पर हर पाप पछाने आप ना ते सोग विजोग संताप नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल क्यों आमन जाना विसर टूट बुराखे काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे विड़ नावे क्यों छूटिए पापे पजे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चो जुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे जो मछली फाथी जमजाल विण गुरदाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक करंग रचे रहे लिवलाए एव छूटे फिर भास न पाए बीरा बीरा कर रही वीर पय बैराए वीर चले कर अपने बैन बिरे जल जाए बाबल कहे कर बेटड़ी बाली बाले नेहे जे लोड़े वर कामणी सतगुर सेवै तेहे बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साज मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तय दे बाणी बिरलो बीचार सी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निकरवासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ पजे हाय उसारे उसरे टाहे सर पर सुख पी पर पुख समर्थ वे प्रवाहे परम पुलाने पए देवाने विण भागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रा पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बौड़ना पछो ताइए पब्बे पाले गुरमुख बूझे ता निज करवासा पाइए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरीये गुरप्रसादी या पोचीने जीवत्या इव मरिए माया माया कर्म होए माया किसे ना साथ हंस चले उड़ डुमणो माया पूली आथ मन झूठा जमझोया अब गुण चले नाल मन में मान उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी कर्म होए विण नावे दुख पाल गढ़ मंदिर महिला कहा यो बाजी दीबान नांग सच्चे नाम वेण झूठा आमन जान आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान जो आवे से जाए फोन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उताहे से जन उबरे जिन हर पाया धंधा मुआ विगोती माया जो दिसे सो चालसी किसको उम्मीद करे हो जियो समपो अपना तन मन आगे देओ अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट गुणकी मारी होमोई सब धरती मन चोट राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकीर।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कछी अले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कछी अले घट घट कमन निवासो ताल का ठीका क्यों जिलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइए गुर के शब्द हमें बिख मार ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द कथा विचारी, गुरमुख हो में अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कमन आहार, हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन।

सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परमगत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा जो तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी, रात दिस उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वन त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए, जिसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर भोजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बछोड़ेन वे सच्चा असराओ, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, फिर जे सतगुर ना सेवे हो विच हो में जन्म बिनास, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुणतास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो से रत अपने तेन तन लोभ रत न होए, पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार, परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार, देश नु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना शोभावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भगती सीगार कर निज जम्मे होए खुवार सहे सारे विच शोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सात न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवे जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मन मुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध्य ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी खुद जेवड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रखियोन गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विगूती गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਖੱਟੇ ਭਾਓ ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਵੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਵੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ ਜੋਗੀ ਗਿਰਗੀ ਜਡਾ ਬੇਪੂਤ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਤ ਗਵਾਈ ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਸੂਜ ਨੇਊ ਪਲਗਲ ਪਾਵੇ ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਉ ਦਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ ਚੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ

ना सहस्ती बद्धे संगल ना सदगाई काओ चरे जिस हसिद देवे जे सोई जिस नू देत आए मिले नानक ताको मिले वडाई जिस कड़ पीतर शब्द रवे सब कड़ मेरे हो सबना अंदर जिसे खोवाई तिस कौन कहे जिसे दिखाला बाटड़ी जिसे पुलावे कौन जिसे पुलाई पंद सेर जिसे दिखावे कौन मोहल्ला पहला थो गिरही जो निग्रह करे जब तब संजम पीखिया करे पुन्नदान का करे शरीर थो गिरही गंगा का नीर बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला सो अवधूती जो तूपे आप पिख्या भोजन करे संताप अवहठ पटन में पीख्या करे सो अवधूती से पुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड इस उदासी का पड़े ना कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला तो पाखंडी ये काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले उपने बिंद न दे चरणा इस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला थो पैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मैं रूपे थम आए निस अंतर रहे त्यान ते बैरागी सत सुमान बोले परतर सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे ज्योत तन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तैड़ा मन साधारण, दुर्जन से ती निहो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ। जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ, बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, तर बैराग फिरो तन नगरी।

निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखन की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुबनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुद्र भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो कह कर बजावे तूर अनघत बजे सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रघाव जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

टीले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा फेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सद कीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर ज्ञानी ब्रह्म विचार।

जाखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रघाव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये